0: हेलो
1: हेलो
0: याजो।
1: हेलो
0: यस मामे मैं दे बैठो कपा सू I will never go back anymore. 0544 444 945